लंका में रावण की सेना के साथ युद्ध करने से थके हुए युद्ध भूमि में रावण के पराक्रम का विचार करने वाले और परस्पर संग्राम के लिए सामने आए हुए रावण को जब श्री राम ने देखा, तभी देवताओं के साथ राम रावण युद्ध देखने के लिए आकाश में आए हुए घट योनि ऋषि अगस्त्य श्री राम के पास जाकर बोले।

हे वत्स, आजानुबाहु रामचंद्र, मैं तुम्हें परंपरा से चली आ रही एक गुप्त रहस्य विद्या बताता हूं, जिससे तुम सभी शत्रुओं पर रणभूमि में विजय प्राप्त करोगे। यह गोपनीय आदित्य हृदय नामक स्तोत्र परम पवित्र, तेजस्वी, सभी शत्रुओं का नाशक, सदा विजय दिलाने वाला, नित्य जप करने योग्य और परम कल्याण

सभी शुभ कर्मों में मंगलदायी, सभी पापों का नाशक, समस्त चिंताओं, दुखों, शोक आदि को शांत करने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला यह उत्तम स्तोत्र है। तुम देवों और राक्षसों के द्वारा वंदित पूजित, समस्त लोगों के शासक, प्रकाश देने वाले, तेजोमय किरणों वाले, प्रातः काल में उषा की लालिमा से ऊपर उदय हो रहे भगवान विविस्वान सूर्य की आराधना नाम मंत्रों से कर।

इस आदित्य देवता में सभी देवता विराजते हैं। यह अपूर्व तेजोमय प्रकाश पुंज किरणों से मंडित है। यह अपनी प्रभा से देवों तथा असुरों के समूह और समस्त लोकों की रक्षा करता है, अर्थात समस्त देवता इन्हीं सूर्य के रूप है। यह अपनी किरणों से जगत को शक्ति और स्फूर्ति देता है और इससे ही वह सबका पालन

संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के

इन्हीं के नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गभस्तिमान, सुवर्ण सदृश, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर, हरिदश्व, सहस्त्रार्ची, सप्तसप्ति, मरीचिमान, तिमिरोन्मथन, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक, अंशुमान इन्हीं के स्वरूप हैं।

धाम उत्पन्न करने वाले, किरण समूह को धारण करने वाले, मौत के कारण भूरे रंग वाले, सबको ताप देने वाले, त्रिकालदर्शी, सर्वस्वरूप, लाल रंग वाले, सबकी उत्पत्ति के कारण जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त है, आपको

पूर्व दिशा में पहाड़ की तरह उदय होते हुए दिखने कारण उदयाचल को, अस्त होते समय पश्चिम सुमेरु पर्वतमाला को तेजो पुंज से प्रकाशित करने वाले देव, आपको नमस्कार है। सभी तेज प्रकाश देने वाले ग्रहों तारों के अधिपति और दिन के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे जय स्वरूप, विजय तथा कल्याणदायक, आपको नमस्कार। आपके दिव्य रथ में हरे रंग के घोड़े हैं, आपको बार बार नमस्कार। हजारों किरणों से शोभायमान, आपको अनेक नमस्कार। अदिति के पुत्र होने के कारण हे आदित्य सूर्य, आपको

भक्तिहीन लोगों नास्तिकों के लिए अत्यंत भयंकर रूप वाले शक्तिशाली अत्यंत तेज गति वाले सारंग सूर्य देव आपको नमस्कार है। अपने उदय काल से कमलों को विकसित करने वाले अत्यंत तीखी गर्म किरणों वाले प्रचंड मार्तंड देव आपको बार बार प्रणाम है। हे देव, आप प्रजापिता ब्रह्मा, सृष्टि संहार करने वाले शिव और सब जगह मौजूद विष्णु के भी स्वामी हैं। आप सूर्य हैं, यह सौर मंडल आपका ही तेज स्वरूप है। आप प्रकाश पुंज हैं, सबको जला देने वाली आग आपका ही रूप है। आप विश्व के संहार काल प्रलय में रौद्र रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार।

हे देव, आप अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाने वाले हैं, जड़ता और ठंडक को दूर करने वाले और दुश्मनों को नष्ट करने वाले, असीमित आकार प्रकार वाले, किए गए उपकार को न महत्व देने वाले प्राणियों को कठोर दंड देने वाले, समस्त प्रकाशक नक्षत्रों, तारों, ग्रहों के स्वामी देव स्वरूप, आपको बार बार प्रणाम है। आपका तेज तपे हुए सोने के समान दीप्त है। आप अज्ञान को हरने के कारण हरि है, संसार को रचने के कारण विश्वकर्मा है, तम को नष्ट करने वाले प्रकाश रूप और संसार के सभी कर्मों के गवाह, आपको नमस्कार है।

चंद्र, ये भगवान सूर्य ही संसार के सभी प्राणियों तथा तत्वों का संहार, सृष्टि और पालन तथा रक्षा करते हैं। ये ही अपनी प्रभामय तेज किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और फिर क्रमशः वर्षा कराते हैं। ये सूर्य ही सभी पदार्थों प्राणियों में अंतर्यामी रूप में विद्यमान होकर इनके विश्राम के समय भी चैतन्य रूप में जागते रहते हैं। ये ही देवताओं की प्रसन्नता के लिए, स्वर्गादि फल की कामना के लिए किए जाने वाले यज्ञ आदि, अग्निहोत्र और याजक पुरुषों को मिलने वाला पुण्य फल भी तुम ही हो।

यज्ञों में भाग ग्रहण करने वाले सभी देवगण, यज्ञों के पुण्य रूप भी ये सूर्य देव ही है, क्योंकि समस्त लोकों में जितने भी कर्म हैं, उनको फल तक परिणत करने पहुंचाने में ये पूरी तरह समर्थ है। हे रघुनंदन, इस आदित्य हृदय स्त्रोत्र को मुसीबतों के समय, कठिन समय में, दुस्साध्य रास्तों में और किसी भी भयंकर संकट के समय जो कोई उपासक इस सूर्य देव का स्मरण जप करता है, वह दुख

इसलिए तुम मन लगाकर इस देवताओं के स्वामी संसार के ईश्वर सूर्य देव की पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्त्रोत्र का 3 बार अर्थ सहित भावना करके जप करो। इससे तुम्हें युद्ध में विजय प्राप्त होगी। हे महाशक्तिशाली, तुम जप करके इसी क्षण रावण का वध करने में समर्थ हो सकोगे। ऐसा कहकर जिस तरह मुनि अगस्त्य आए थे उसी तरह

यह सुनकर परम तेजस्वी श्री रघुनंदन राम का शोक दूर हो गया। उन्होंने हर्षित होकर आदित्य हृदय स्तोत्र को शुद्ध मन से धारण किया।

सूर्य देव का स्मरण और दर्शन करते हुए इस स्तोत्र का एकाग्र शुद्ध चित्त से 3 बार जल का आचमन लेकर जप किया। इससे उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उसके बाद पराक्रमी श्री राम ने धनुष हाथ में लेकर रावण की ओर देखा और बड़े उत्साह से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए वे आगे बढ़े और पक्के मन और प्रयत्न के साथ रावण के वध का निश्चय किया।

उस समय देवताओं के बीच खड़े हुए भगवान सूर्य देव ने प्रसन्न होकर श्री राम को देखा और राक्षसों के राजा रावण की मृत्यु निकट समझकर हर्ष प्रकट करते हुए कहा कि हे रघुनंदन, अब इसके वध के लिए शीघ्रता करो।

हम उस प्राण रक्षक, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा के तेजस्वी, श्रेष्ठ, अज्ञान नाशक, दिव्य स्वरूप को धारण करें, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित